0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानंद मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और

0: 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Ashwani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project, worth 480 crore rupees, is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. The scheme aims to accelerate the next phase of aviation-led development. It focuses on multiple strategic components designed to ensure comprehensive and sustainable connectivity. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. Developed as a joint venture between Hindustan Petroleum Corporation Limited and the Government of Rajasthan, the 9 million metric tons per annum greenfield refinery cum petrochemical complex has been established with an investment of over 79,450 crore rupees. Later in the evening, Prime Minister Modi will travel to Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility at Sanand. The project is one of the first four approved under the India Semiconductor Mission and has been developed with a total investment of over 7,500 crore rupees. Over 1,02,000 enumeration forms across the national capital have been digitized so far. According to the Office of the Chief Electoral Officer of Delhi, about 33,14,000 forms have been distributed as part of the special intensive revision of electoral

0: সুন্দৰ সমন্বয়ৰে অসমে সম্প্ৰতি বিশ্ব চাহ উদ্যোগত নতুন দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে বুলি ডঃ শৰ্মাই মন্তব্য কৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ দুলিয়াজানত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত কালি ডঃ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ স্মৃতি সভা এখন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিজেপি সভাপতি দুলাল বৰা আৰু জ্যেষ্ঠ নেতা ডঃ হৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দত্তৰ প্ৰয়াত শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী সন্দৰ্ভত ভালেমান দিশ দাঙি ধৰি স্মৃতিচাৰণ সভা ডিব্ৰুগড় জিলা বিজেপিৰ ভালেসংখ্যক বিষয়ববী আৰু সদস্য উপস্থিত থাকে। আমাৰ এতিয়া বাতৰি মানে পৰৱৰ্তী বাতৰি পুৱা ন বজাত শুনিবলৈ পাব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
2: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री चूरू शाहदुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
3: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी औसत सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से

0: जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
1: गृहमंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक

0: संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्य लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्य ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी

0: অনুষ্ঠানটি শুনিবলৈ পাব দেওবাৰে নিশা 9:30 বজাত।
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া 12 বজাৰ পৰা হিন্দীত বাতৰি আৰু 12:05 মিনিটৰ পৰা আঞ্চলিক বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
3: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
2: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सारणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता

0: কিছুমান আপুনি য'তেই যোগাসন কৰে চাই ল'ব তেওঁ সেই গুৰুজন যাতে উন্নত মানৰ গুৰু হয়, তেওঁৰ সেইখিনি নলেজ থকাটো খুবেই বেছি দৰকাৰ।
1: সকলোৰে শৰীৰটো বেলেগ বেলেগ, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰশিক্ষকসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈহে আগবঢ়া উচিত।
0: হয়,
1: খুব ভাল লাগিল আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি, লগতে আমি যোগাসন সম্পৰ্কে বিভিন্ন দিশ আমি গম পালোঁ, আমি ইয়াৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে জানিলোঁ, ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাক ইমানখিনি সময় দিলে, আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
0: হয়, ধন্যবাদ। যোগ আমি সকলোৱে কৰিব লাগে, আৰু সুস্থ বাৰ্ধক্যতা বুলিয়েই নহয় নিজৰ দৈনন্দিন লাইফত আমি ডেইলি এক্টিভিটি হিচাপে যদি আমি যোগটো এড কৰি ল'ব পাৰোঁ, প্ৰত্যেকেই এটা সুস্থ জীৱন আমি প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সদায় যোগা কৰি থাকিব,
1: নিয়মিতভাৱে সকলোৱে যোগাসন কৰক, সকলোৱে সুস্থ হৈ থাকক, আমি তাকেই কামনা কৰিলোঁ। আৰু প্ৰিয় শ্ৰোতা, ইয়াৰ লগে লগে শৰীৰ আৰু স্বাস্থ্যৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা মই স্নেহা পাঠকে ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।
2: শৰীৰ আৰু মনক সবল কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত যোগাভ্যাসৰ ভূমিকা, এই সম্পৰ্কে যোগ প্ৰশিক্ষক কাকলি মহন্তৰ সৈতে স্নেহা পাঠকৰ কথোপকথন শুনিলে।
3: আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতেই অন্ত পৰিল। স্নেহা পাঠকৰ সহযোগত অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা কৰিলে ইন্দ্ৰজিৎ দাসে।
4: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া 1 বজাৰ পৰা হিন্দীত আৰু 1:05ৰ পৰা ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
5: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে জাগৃতি শৰ্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय राजस्थान के बालोतरा में हैं। उन्होंने बालोतरा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
6: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
5: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण विकास से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। UAPA अधिनियम में संशोधन से केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की शक्तियों का विस्तार करके देश के आतंकवाद रोधी कानूनी ढांचे को मजबूत किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, मतदाता पंजीकरण अधिकारी और बूथ स्तरीय अधिकारी ने उपराष्ट्रपति भवन में चल रही मतदाता सूची के SIR के अंतर्गत गणना प्रक्रिया को सुगम बनाया है। श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोमवार को अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रस्ट को प्राप्त दान की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT के निष्कर्षों सहित कई महत्वपूर्ण

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1,000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।

0: कानपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा

0: ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: এতিয়া শুনক পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান।

0: Anji la so kon te ma oi.
1: Tok dun ji oi. Halang ni hemar kok patang lang de.
0: Wang da prang tu oi.
1: Da,
0: da.
1: Lang dun oi.
0: Chok lo bo oi.
1: Chok lo.
2: Ko ho la. Lang ge chok a phang ge dam. Ku ma lo ko kar ting. Sar pu rong hang a suk ti.
3: Ti ko. Bai ku mi u di. Ta ko du na.
2: Da.
3: A la cha. Philippia dum bo jo.
1: Ta lang o.
3: Ni li nang le tung ham. A ni si bang nang ju ji de. Philippi.
1: Thang da chung mu vi ti ong nang ju ta me an ta.
0: Da mang o man ji. Nang pinu ke ani Philippo oi.
1: Pa thi nang ti ma oi.
0: Phere re ma oi. An ke hai.
1: Phere lo la si ni ke du joi ti ti ke thak te de ti ti le oi ni ke.
0: Phere me me le o nang pinu ke.
1: Non an na lang ki sok ki vang he. Te rak re ma nang. Lang I pum pum ki sok dam tan ning tan si hi ni nang ji ma. ओ नंग फांदा नंग जी थाम पाई पे आ होक ले आना बे हाँ बांग हम तुना फोकंग कर बुते हाँ बांग हम अंचुनो ना जी डाले आंगे दोपो बांग हम चुनो हाँ बांग सी नंग फोकंग करंगे नंग ला लांग इपुंगी सोक दम पे निंका निसी ही नी है थे रात कम मेगा बे माँ सी सोन ले नंग के लांग पो मंजिर नंग बाहर दे मनंग थाके दे दो पिनू जे प्लांग जी बुलो के था थे बेन पा दुई देत लाले का चीनी लो मा बुते चीनी ने नांग था थे देसी ओ अर्जु थे लो बो पूजी मा पू अर्जु थे थे का थे रा का मे का वे जो ने बांगा रोंगी दुन जी नांग हेम लांग पा मे मोने के वांग हु जोंग से नांग हेम आवे देते फो दप्रांग पो हो नांग नोंग ले की जुमे स्टेन लांग मा हा ने नोंग ले की जुमे स्टेन लांग मा नांग का से प्लांग हाथ दूर से मा था थे मोने ने बांग कि बांग जोंग सी हेम अविदे पुलते नांग थोपो हेम लांग पामी जो
2: फिलिपी नांग ली बांग दो मा
1: दो ओं नासी पाले एक पो
2: नांग की जुई फिलिपी नांग ली पाम का या निल्यांग थे बांग ता नांग नी आरों अविदे तिती को पीपा लो का ले नांग थे बांग ता नांग हां एर हांग दिति नंग मेक थिजांग रिंग दिति नंग निंग कोय सोंदो मा
1: बाय ओंग आको पेनिके इपी पातेंग पुलोते आते मोगे दोई को के मा इपी पातेंग पुलोते आसाप ओ एका चेने के दो के दो तेंग आई ओंग लसिनी लिके नहोक ले दाम सीता में इनिंग आरोंग अवे काईता एमेक थिजांग रिंग दिति लो ओंग

आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु रादाबफोरा नोंसानसुमखुंगुर बर'आ गिबि मंत्री हेमंत विश्व शर्माया गोदान दिल्लीनिफ्राय गिदिंना फैना मैया गुवाहाटी नोगोरमा जौगालु बिफाननि मावख'ग्राफोरजों खुंनाय मोनसे सावरायमेलाव नोगोरमानि मावबिथांखिफोरखौ मावफुंनाय आरो जौगानायनि फारसे खौरां लायो। बेनि उनाव गिबि मंत्रिया आसाम मोब्लिब ग्रिड निगम लिमिटेडनि मावख'ग्राफोरजों मोनसे सावरायमेलाव हादरसानि मोब्लिब गोहो बांहोनायनि फारसे गोनांथि होनाय जायो। बे मोननै सावरायमेलाव मंत्री कौशिक राय, उफ्रा गाहाय सचिव डॉ के डिविडि, आसाम गोहो राननाय कम्पानि लिमिटेडनि सामलायगिरि राकेश कुमार आरो सानैसो गागि मावख'ग्राफ्राबो बाहागो लादोंमोन। दामिन फालांगि आरो रायजोआरि फसंथान बिफाननि मंत्री बिमल बरुवाया जि आई टेक मोननो हानाय आसामनि गामसा आरो आर'नायखौ गुबुन हादराव दैथायहरनो थाखाय आसामाव मोनसे मिरु गायसननो हांख्रायदों। मंत्री बिथाङा कन्टेनारनि आंखालाव गुवाहाटीनिफ्राय गुबुन हादराव साहा दैथायहरनायाव असुबिदा जानायनि थाखाय कलकातानिफ्राय दैथायहरनाय बाथ्राखौ फोरमायो। बिथाङा लोगोसे भैब' मावबिथांखिनि सिङाव आसामावनो फ्लाग एन्ड प्ले दामिन गायसननो थाखाय मिरु सरकारखौ हांख्रायो। आदार जगाय मंत्री कौशिक राया हायुंआरि आदार रैखाथि आयेन 2013 सिङाव आसामाव हादरसा आदार जगाय आयोग दाफुंनो बिथोन होदों। मंत्री बिथाङा मैया बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों सावरायनानै बुङोदि बे आयोगाव गासै 7 सोद्रोमा थागोन। आदार रैखाथि राहाखौ मावफुंनो थाखाय बे आयोग दाफुंनायनि गोनांथि दं होननानै मंत्री बिथाङा फोरमायो। बिटिसि जारखुंथायाव मैया गोदानै मावफुं सोद्रोमा महरे जेम्स बसुमतारियाव समायखिरा लायो। चिरांनि निसिमा समष्टिनि MCLA जेम्स बसुमतारिखौ मावफुं सोद्रोमा महरै बिबान होनायाव जिल्ला BPFनिफ्राय बिथांखौ बरायो। BTC खुंथायनि हाग्रामा आरो आबहावा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिबान मोननाय जेम्स बसुमतारि हाग्रामा आरो आबहावा रैखाथिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांगोन होननानै फोरमायो। आसाम सुबुं सिबिथाय आयोगनि जोहै बादायारि आन्जादखौ गाबोन खुंनाय जागोन। बेनि थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लानि बायदि जोरहाट

लखिमपुर जिल्लायावबो भारतारि नोगोरारि रैखाथि 163 नं धारानि सिङाव खायसे होबथानायफोरखौ फोसावनाय जादों। बे होबथानाय बायदि आन्जाद खुंनाय मिरुनि 100 मिटार जान्थायाव गनायथि गैयै रावबो सुबुंखौ हाबफैनो होनाय जानाय नङा। बिथोनखौ सोरबाया सिफायोब्ला बेनि हेंथाया आयेनारि साजा होनाय जागोन होननानैबो फोसावनाय जादों। जिल्ला खुंगिरिया आन्जादखौ गोजोनै खुंफुंनो थाखाय बिजाथि दिथागिरि आरो सरासनस्रा सुबुंनि मददथि हांख्रायदों। तिनिसुकियानि सता टिंराय साहा बागाना हादरनि गेजेराव गिबि खेबनि थाखाय फालांगि बिथिङाव मासा साहा दिहुननानै जारिमिन रनसायनो हाबाय। गिबि खलबाव दिहुननाय मासा साहानि एसे बिबांखौ गुवाहाटी साहा निलाम मिरुआव बावैसो 3000 राङाव फाननाय जादों। गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया मैया समाजारि बिजोंनि जोहै बुङोदि आसाम साहा दामिनाव गोदान लामा सोरजिनो हाबाय आरो फालांगि बिथिङाव आगानसे सिगांनो हाबाय। दिनै गागि खन्थाइगिरि हिरेन भट्टाचार्यनि गोसोखां सान माखासे खन्थाइ बिजाब जथायनायनि असमिया राव हारिमु थुनलाइखौ जौगाखां होनाय खन्थाइगिरि भट्टाचार्यनि गांनै खन्थाइ बिजाबखौ बांला रावआव सोलायनाय जादों। 1990 मायथाइयाव साहित्य एकाडेमिनि बान्था मोननो हानाय हिरेन भट्टाचार्यनि सुगन्धि पखिला आरो शस्यर पथार मानु मुंनि गांनै खन्थाइ बिजाबा मख'जाथाव। 1970 मायथाइयाव बिथांनि गिबि खन्थाइ बिजाब मोर देह मोर प्रेमर कबिता फोसावजानायनि उनाव सिरिबाङै ओंखारो, जेरै विभिन्न दिनर कबिता, कबितार रोद, मोर प्रिय बर्णमाला, भालपुवार बोकामाटि आरिया सेबखांजादोंमोन। 2012 मायथाइयाव दिनैनि सानाव जोबथा हांबोनाय खन्थाइगिरिनि गोसोखां सानखौ हादरसानि गुबुन गुबुन जायगायाव बायदिसिना हाबाफारिजों खुंनो लानायनि रादाब मोननाय जादों। सानजा गुवाहाटीनि लेङाइ पुलिस आयुक्त ताबुराम पेगुआ गुवाहाटीयाव 100 कौटि नंखाय रां हाबदों होननानै सासे अजद दैखांगिरिया खौरां बिजोङाव फोसावनाय सैथोथि गैया होनना फोरमायदों। मुश्री पेगुआ मैया मोनसे खौरां मेलाव बुङोदि नंखाय रांनि हेंथायै मोननै गसर गथायनाय जादों, लोगोसे नंखाय रांफोरखौ सिनायनाय आथिखालाव जोबोद गोरलै होननाबो बिथाङा फोरमायो। फिफा फुटबल मुलुग काप बादायनायनि राउन्ड अफ 16 एबा जोबथा 16 हाबनो थाखाय मोननैसो गोनांथार गेलेनाया जालाङो। राउन्ड अफ 32 दिनै मोनसे गेलेनायाव कलम्बियाया देरहानानै उननि राउन्डखौ मोननो हाबाय। कान्सास सिटी स्टेडियामाव खुंनाय मोनसे गेलेनायाव कलम्बियाया धानाखौ 1-0 गलाव फेजेनो। बेनि सिगां आमेरिकानि मायामी गार्डेन्सआव जानाय गुबुन मोनसे गेलेनायाव आर्जेन्टिनाया केव फार्डेखौ 3-2 गलाव फेजेनो। ओरैहाय आर्लिंटनआव खुंनाय गुबुन मोनसे गेलेनायाव अस्ट्रेलियाखौ पेनाल्टि सुट आउटआव 4-2 गलाव फेजेनानै इजिपा राउन्ड अफ 16 हाबनो हायो। थिखानाय 90 मिनिट आरो उफ्रा समावबो गेलेनाय 1-1 गलाव फोसावनाय उनाव पेनाल्टिनि मदद लानानै गोनां जायो। बे देरहानायजों गोलाव 92 बोसोरनि उनाव इजिपा जारिमिन सुजुनानै मुलुग काप नकआउट खलबाव गिबि खेब देरहासार जानो हाबाय। बेजों लोगोसे जों रादाबाय एसेनोसै।

खुलुमबाय बे आकाशवाणी गुवाहाटी नोंथांमोना आयदाखौ खोनानो मोन्दों महाबाहु दालायनिफ्राय गिबियावनो दुलाराय खोनासंगिरिफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बाहरनानै दिनै बर' आफादखौ बेखेवनाय जाबाय आफादखौ फोसावनाय जादों आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालायनि मिडिया मुभनि 411.5 मिटाराव आरो एफएम बेन्डनि 101.6 मेगाहर्ट्जआव बे फोसावनायखौ नोंथांमोना आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहर्ट्ज आरो आकाशवाणी धुबुरीनि 103.3 मेगाहर्ट्जआव रिले खालामनानै फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दं लोगोसे निउज अन एआईआर मबाइल एप आरो एआईआर रेडिय' मबाइल एपनि जोहैबो नोंथांमोना बे फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दं दान्दिसे उनाव नोंथांमोना जोंनि उननि हाबाफारिखौ खोनानो मोनगोन आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु फोसावना लानाय जादों उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि रंजालि आफाद आयदा बे आयदायाव खोनासंदों आगोलावनो फोसावजाखांनाय सानजा बोराली सोलोंसालि गरेश्वर रंजालि आफादनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि

गिबियावनो दुलाराय खोनासंग्रिफोरनिसिम सानजाबुलारि सोलोंसालि गरेश्वर रंजालि आफादनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो गोजोन हामलायनायखौ बाउहरनानै हांखुर कुमार बर'आ सुजुनाय आरो अरन बसुमतारिनि देंखो होनाय दोंसे हान्जा मेथाइजों रंजालि गथ'फोरनि आयदाखौ बेखेवनो लानाय

0: रोजाबगिरि महरै दंमोन जमुना बर' हेलेना रानी बर' गोजोनश्री बर' धोरोमसा बसुमतारी दैमुश्री बर' निजिरा दैमारी अनामिका बर' भूमिका बर' जया बर' जेलिना बसुमतारी सानरेब बसुमतारी नेहा नार्जारी निजोमश्री बसुमतारी रश्मिता बर' मरमि दैमारी आरो लबिता दैमारी बिनानाव नोंनि मुङा मामोनलाय
1: खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना जमुना रानी बर'
0: दायो नों मा खालामनो सान्दों
1: दायो आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सान्दों
0: दे बिदिब्ला आवरायनायसाय
1: खन्थाइनि मुं जोंनि गामि बे खन्थाइखौ लिरदोंमोन गुनेश्वर मुसाहारि जोंनि गामि मिथिंगानि लाइमोन महरजों दाजानाय जोंनि गामि गय खान्थाल थाइजौ सारि सारि समायना बे जुगामि साखाथिजों बोहैलांदों मिथिंगानि गोगो दैसा जिरि जिरि बेयावनो गेलेयो हेलु मेलु उदां आसारि बिसारि सावरि बादालि आरो फुजा फैबो ज' ज' मावलायो हाबा ओंखामनि आलि बेदरनि आखाय जायोब्लाबो जमा जोबा गथ'

हाबाब आनान गसाय संसाराव दि नों गसाया सोरखौबा धोनि सोरखौबा गरिब खालामना सोरजिदों बै बुरिया फिसाजो सानैखौ बोरै फेदेरदों फोलावदों आं माथो बिसोरखौ मदद खालामनो हायो आंनि सनानि गांखौ बिसोरनो सानफ्रोमबो गांफा गांफा होबाय थायोब्ला गांखौ फाननानै खामायनो हागोन आं दानो थांनानै बै बुरिनियाव नुजाहैनांगोन आरो गांसे गां होबोनांगोन जाहैबाय

0: आं फैबायमोन
1: दे सना फिथर
0: लादो नै गांसिखौ
1: दे सना फिथर नै आंनि फिसाफोर हांसोनि गांखौ फाननानै जों गोबां रां बुथुमबाय जोंनि सिलिंखार न'आ दिनै ग्रोम ग्रोम जाबाय जानो लोंनो आंखाल गैयि जाबाय बेखायनो नोंसोरनो फंसे बाथ्रा बुंनो सानबाय
2: मा बाथाय
1: खोनासं हांसोखौ अरायजों बेबायदि फोथायबाय थानो हानाय नङा माब्लाबा बियो थिउ बिलांगोन आरो जेब्लाबो फैफिननाय नङा अब्लाथ' जों फिन गोरिब जाफिनगोन बेखायनो हांसोआ फैब्ला बेनि गांखौ फुननानै लाखिजोबनांगोन
2: आयै बिदि खालामब्ला जों हांसोखौ दुखु होनाय जागोन बेनि फारसे इनाय खालामनाय जागोन
1: नोंसोरनि बाथ्राखौ आं मदद खालामनो हानाय नङा

0: आं फैबाय दे नों गांखौ लादो
1: आं नोंनि गासै सोनानि गांखौ दिनै फुजोबना लाखिगोन नों दिनैनिफ्राय फैयाब्लाबो जासिगोन
0: दे जागोन दे
2: आयै नों फुनाय गांफ्रा गासै गुफुरसो जाजोब्बाय जों बुंब्लानो बाथ्रा खिथा लानो गिरा नङा ना दालाय मा जाबावनो सनानि सोलाय गासैबो गुफुर जाफिनजोब्बायसो
1: नंमारगौ माथो हे आंनि सना फिथर हे आनान गसाय आंनिया गोरोन्थि जामारबाय निमाहा हे आनान गसाय
0: नै बुरि बिदिब्ला खोनासं मदद होब्ला मददगिरिखौ अजगरा जायो नङा होनब्ला
3: खुलुमबाय नोंनि मुङा मामोनलाय
2: खुलुमबाय आं मुङा मुस्रि सान्द्राय बसुमतारि
3: दायो नों मा खालामनो सान्दों
2: दायो आं लोगोफोरखौ गोरलै गियान सोंनो नागिरदों
3: दे बिदिब्ला सोंनायसाय
2: बर' थुनलाइ आफादनि गिबि आफादगिरिया सोरमोन बिटिआर गोजोन गोरोबथाया माब्ला जादोंमोन
4: 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि
2: बर' बिजों सानखौ माब्ला फालिनाय जायो
4: 18 मे
2: बर'नि गिबिसिन खन्थाइ बिजाबनि मुङा मा
4: खन्थाइ मेथाइ
3: बिनानाव नोंनि मुङा मामोनलाय
5: खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना सेलिना बसुमतारि
3: दायो नों मा खालामनो सान्दों
5: दायो आं लोगोफोरखौ बाथ्रा फांथे सोंथि खालामनो सान्दों
3: दे बिदिब्ला सोंनायसाय
5: गांसो जायो मोसौ नङा बिरो दाउ नङा मा बेलाय
4: गुमा
5: गोदोना दं खर' गैया आखाय दं आसि गैया उदै बिखा दं आइथिं गैया मा बेलाय
4: गस्ला
5: हागौ मानि मोसाबाय मोसायै मोसायै गान्नायासो गलांबाय मा बेलाय
4: सोरखि
5: हादोर दङ मानसि गैया मा बेलाय
4: मानसावगारि
5: गोजोनदों
3: नोंनि मुङा मामोनलाय
6: खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना अनामिका बर'
3: दायो नों मा खालामनो सान्दों
6: दायो आङो दोंसे खुगा सल' बुंथिनो सान्दों
3: दे बिदिब्ला बुंथिनायसाय
6: खुगा सल'नि आयदा अखाफोरनि मोखाङाव मानो दागो दं बुथुमगिरि हांकुर कुमार गोदो गोदाय सान आरो अखाफोरा बिदा फंबायमोन सानसेखालिनि बाथ्रा बिसोरखौ खाथिनि गंसे गामिनि न'खरसेयाव मोनसे फोरबो जानो लिंहरदोंमोन फोरबोआ सानावनो जानायलाय साना अख्राङावनो जोबोर मुखुब थानांदोंमोन आरो फोरबोआव फैनो हायाखैमोन बेनिखायनो बियो फंबाय अखाफोरखौ हारसिङैनो फोरबोआव नुसाथिहैनो थिनायसै आरो गावनि बाहागो जामुंखौ जुनानै लाबोफानो थाखाय फंबाय अखाफोरखौ खावलायनायसै अखाफोरा हारसिङैनो फोरबोआव थांनानै अहा जासे रोनो रोनो जानायसै आरो बिदा सानि बाहागो जामुंखौ जुनानै लाना न' फारसे फैफिननायसै नाथाय गोलाव लामा हान्थिनानै मेंनायजों आरो सानि बाहागोनि जामुंखौ जानो लुबैनायजों बियो बिदानि बाहागोखौबो लामायावनो जाखोमा जोबनायसै जाखांनायनि उनाव मा खालामगोन मा मागोन बिदा सानखौ थगायनो थाखाय बियो मोनसे सोलो खालामनायसै बियो

0: गांसे बिलाइयाव खिनानै बेखौ बिलाइजों जुनानै लानायसै। बियो साननायसै दि बिदा साना गावनि बे फावखौ मोनथिनाय नङा। उदै बिलिर बिलिर बियो न' फारसे फैफिनायसै। मोनाबिलि समाव गावनि खामानियाव फैनानै फंबाय अखाफोरनाव गावनि बाहागोखौ बिफैनायसै। नों आंनि थाखाय खाजि लाबोदोंमोन ना? अखाफोरा गावनि खामानियाव थांहायै फिननायसै। नै नोंनि बाहागोआ बेलाय। बेबायदि बुंनानै बियो बिलाइजों जुनाय गावनि खिखौनो बिदानो होफैनायसै। साना थफ्लाखौ नाजानानै खेवनाय लोगो लोगो गाज्रि मोनामनायजों थार बाथ्राखौ मोनथिनानै रागा दिउ दिउ जोंनायसै। बेबायदि गाज्रियै थगायजानानै बियो बे थफ्लाखौ अखाफोरनि मोखाङाव खुबैनानै होनायसै आरो अखाफोरखौ साव होनानै बुंनायसै, दिनैनिफ्राय नों बुहुमनो नांगौ बायदि सोरां होनो हानाय नङा। बै सानखालिनिफ्रायनो अखाफोरनि मोखाङाव खायसे गोसोम गोसोम दागो जाना थानायसै आरो बेनिखायनो बियो बुहुमनो थोजासे सोरां होनो हाया जाना थानायसै। गोजोन्थों।
1: नोंनि मुङा मामोनलै?
2: खुलुमबाय, आंनि मुङा थरेदा लिहना बसुमतारी।
1: दायो नों मा खालामनो सान्दों?
2: दायो आं दोंसे मेथाइ खननो नागिरदों।
1: दे बिदिब्ला खननायसाय।

0: दुलाराय खोनासंग्री मोननिसिम सानजा बोलारि सोलोंसालि गरेश्वर रंजालि आफादनि खुलुमनाय सिबिनाय आरो गोजोन हामलायनायखौ फिन बावहरफिननानै रंजालि गथ'फोरनि आयदाखौ इसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।
1: एसे सम नोंथांमोना दिनैनि रंजालि आफाद आयदायाव आगोलावनो फोसावजाखांनाय सानजा बोरालि सोलोंसालि गरेश्वरनि रंजालि आफादनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि रंजालि आफाद आयदाखौ खोनानबाय। बेखौ दैदेनदोंमोन हांखुर कुमार बर'आ। आकाशवाणी गुवाहाटि महाबाहु मेथाइ नायदायाव खोनासंदो बलेन बसुमतारिनि गाराङाव सीताराम बसुमतारिया सुजुनाय मेथाइखौ।

एसएसएम थामना रेना दैमारनि गारां दोंसे खुगा मेथाइ खोनानबाय बेजों लोगोसे मेथाइनि आयदायाबो एसेनोसै आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु सम जाना फैनायलाय दुलाराय खोनासंग्राफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ फिन बहनानै दिनै जोंनि आफादखौ सोनो फुजुनाय जाबाय गोजोन्थों।

0: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, आओ बैठो। आज हम हिंदी के उपन्यास साहित्य के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे, साथ ही लिंग व्यवस्था के बारे में भी विस्तृत आलोचना करेंगे।
0: लेकिन पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा था उसे एक बार दोहरा ले तो अच्छा होगा।
1: क्या तुम्हारा भी यही राय है मनोरंजन?
2: जी हाँ।
1: तो ठीक है, पिछले पाठ में हमने उपन्यास साहित्य में प्रेमचंद युग पर विचार किया था और व्याकरण में लिंग व्यवस्था की अधिक जानकारी ली थी।
0: क्या आज आप प्रेमचंद युग पर ही आलोचना करेंगे?
2: दीदी, आज आप शायद प्रेमचंद उत्तर उपन्यास साहित्य पर ही जानकारी देंगी, है ना?
1: हाँ, तुमने ठीक ही कहा है। आज प्रेमचंद युग के पश्चात हिंदी साहित्य में जिनकी रचनाएं हमारे सामने आई उनके बारे में ही आलोचना करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि लेखकगण युग दृष्टा होते हैं, अतः युगीन प्रभाव उन पर पड़ता है। तत्कालीन युगीन परिवेश यानी राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक

0: सामाजिक, नैतिक, आर्थिक सभी से वे प्रभावित होते हैं। प्रेमचंद उत्तर उपन्यास साहित्य में क्रांतिकारी, समस्यामूलक, सामाजिक, यथार्थवादी, मनोविश्लेषणवादी, फ्रायडवादी तथा वैज्ञानिक उपन्यास साहित्य ने जोर पकड़ा था। तो प्रेमचंद उपन्यास साहित्य में क्या हुआ था मेरे साथ कहो? प्रेमचंद उत्तर उपन्यास साहित्य में,
1: प्रेमचंद उत्तर उपन्यास साहित्य में
0: क्रांतिकारी,
1: क्रांतिकारी,
0: समस्यामूलक,
1: समस्यामूलक,
0: सामाजिक,
1: सामाजिक,
0: यथार्थवादी,
1: यथार्थवादी,
0: मनोविश्लेषणवादी,
1: मनोविश्लेषणवादी,
0: कहो मेरे साथ मनोविश्लेषणवादी,
1: मनोविश्लेषणवादी,
0: फ्रायडवादी,
1: फ्रायडवादी
0: तथा वैज्ञानिक उपन्यास साहित्य ने,
1: तथा वैज्ञानिक उपन्यास साहित्य ने,
0: फिर से कहो, वैज्ञानिक उपन्यास साहित्य ने,
1: वैज्ञानिक उपन्यास
2: साहित्य ने,
0: उल्टा पुल्टा कर रहे हो, वैज्ञानिक उपन्यास साहित्य ने,
1: वैज्ञानिक उपन्यास साहित्य ने
0: जोर पकड़ा है,
1: जोर पकड़ा है।
0: अच्छा देखो, उपन्यास लेखकों में वृंदावन लाल वर्मा, राहुल संकृतायन, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री तथा आचार्य हजरत सद्विवेदी का नाम उल्लेखनीय है। तो कौन कौन से लेखक हैं मेरे साथ कहो? वृंदावन लाल वर्मा,
1: वृंदावन लाल वर्मा,
0: राहुल संकृतायन,
1: राहुल संकृतायन,
0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री,
1: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री
0: तथा आचार्य,
1: तथा आचार्य
0: हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम,
1: हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम
0: उल्लेखनीय है,
1: उल्लेखनीय है।
0: अब आए हम इनकी क्या क्या रचनाएं हैं उस पर, ठीक है? उनकी रचनाएं हैं मृगनयनी, कहो
1: मृगनयनी,
0: भुवन प्रिय,
1: भुवन प्रिय,
0: गोली,
1: गोली,
0: बयम रक्षाम,
1: बयम रक्षाम,
0: बाण भट्ट की आत्मकथा,
1: बाण भट्ट की आत्मकथा,
0: चारु चंद्रलेख आदि,
1: चारु चंद्रलेख आदि।
0: अच्छा यहाँ पर एक बात तुम्हें कहूँ मनोरंजन, हिंदी में च का उच्चारण हमेशा कहते हैं चारु चंद्र, मेरे साथ कहना चारु चंद्र,
2: चारु चंद्र,
0: चा बोलो चा,
2: चा,
0: चारु चंद्र,
2: चारु चंद्र,
0: हाँ बस ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद उत्तर उपन्यास साहित्य में आंचलिक उपन्यास भी उभर कर आया, एक सर्वथा नवीन रूप लेकर। इस वर्ग के उपन्यासों में समाज और व्यक्ति के पारस्परिक सापेक्षिक महत्व को स्वीकार कर दोनों को ही केंद्र बनाकर उनकी समस्याओं और संघर्षों का अंकन किया गया है। इसलिए ऐसे उपन्यासों में व्यक्ति समाज या उनके किसी विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधि बनकर आता है। इन उपन्यासकारों में यशपाल, रांग्या राघव, अमृत राय, नागार्जुन प्रधान रूप से तथा अमृतलाल नागर, उपेंद्रनाथ अश्क आदि सामान्य रूप से प्रमुख रहे। तो और विशिष्ट वर्ग प्रतिनिधि बनकर कौन आए मेरे साथ कहो? यशपाल,
1: यशपाल,
0: रांग्या राघव,
1: रांग्या राघव,
0: अमृत राय,
1: अमृत राय,
0: नागार्जुन,
1: नागार्जुन,
0: ये सब प्रधान रूप से आए। हाँ, और सामान्य रूप से आए अमृतलाल नागर,
1: अमृतलाल नागर,
0: उपेंद्रनाथ अश्क,
1: उपेंद्रनाथ अश्क,
0: और बहुत से लेखक ऐसे। हाँ,
1: অসমীয়া সাহিত্যত আধুনিক উপন্যাসৰ বিষয়ে কবনে?
0: নিশ্চয়। ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে গল্প উপন্যাসত জাতীয় চেতনা ইত্যাদি বিষয়বোৰ কিছু পৰিমাণে স্থান লাভ কৰিলে যদিও কোনো বিশিষ্ট উপন্যাস সৃষ্টি হোৱা দেখা নাযায়। কিন্তু এতিয়া বহুতো উপন্যাসিকে ভালেমান উপন্যাস আমাক দিছে, যেনে মেদিনীমোহন চৌধুৰীৰ অনন্য প্ৰান্তৰ, মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ দতাল হাতীৰ উয়ে খোৱা হাওদা, চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াৰ তুৰে মূৰে আলোকৰে যাত, এনে বহুতো লেখকে অসমীয়া সাহিত্যক সমৃদ্ধিশালী কৰিছে।
2: বাইদেউ, হিন্দী সাহিত্যৰ লগে লগে অসমীয়া সাহিত্যৰো চিনাকি দাঙি ধৰিলে বৰ ভাল লাগিল।
0: আও আব হম ব্যাকৰণ সম্বন্ধে বাতো পৰ চৰ্চা কৰো।
1: দিদি, পিছলে পাঠ মে হামনে লিঙ্গ ব্যবস্থা সম্বন্ধী নিয়মো পর বিস্তৃত জানকারী প্রাপ্ত কী।

0: आपने उपनिवेशक संज्ञा के लिंग का निर्णय किस प्रकार किया जाता है उसी के बारे में आपने बताया था, आज क्या पढ़ाएंगी दीदी?
1: अच्छा, आज आज लिंग संबंधी बातों को और विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे मानो हिंदी के आ छोटी ई बड़ी ई ऊ बड़ी ऊ अंत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे प्रार्थना, दया, आज्ञा, लता, माला, भाषा, सरिता, दशा, मूर्ति, नदी, रश्मि, बधु। हाँ, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद है, जैसे मानो कुर्ता, कुत्ता, बूढ़ा, पिता, लड़का। तो स्त्रीलिंग क्या क्या है? आ,
2: आ,
1: छोटी ई,
0: छोटी ई,
1: बड़ी ई,
0: बड़ी ई,
1: छोटी ऊ,
0: छोटी ऊ,
1: बड़ी ऊ,
0: बड़ी ऊ,
1: अंत संज्ञाएं, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। जैसे मानो प्रार्थना,
0: प्रार्थना,
1: दया,
0: दया,
1: लता,
0: लता,
1: माला,
0: माला,
1: भाषा,
0: भाषा
1: आदि। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी आकारांत कुछ शब्द है जो पुल्लिंग है। जैसे मानो कुर्ता,
2: कुर्ता,
0: कुर्ता,
1: हाँ, कुर्ता क्या है? पुल्लिंग। हाँ, कुर्ता,
2: कुर्ता,
1: कुत्ता,
0: कुत्ता,
1: बूढ़ा,
0: बूढ़ा,
1: पिता,
0: पिता,
1: लड़का,
0: लड़का।
1: अब छोटी इकारांत कुछ शब्द देखो, बुद्धि, राशि, क्रांति, नीति, भक्ति, छवि, स्तुति, स्थिति, ये सब स्त्रीलिंग है। और अपवाद क्या है? शशि, रवि, हरि, मुनि, ये सब पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग क्या क्या है छोटी का? बुद्धि,
0: बुद्धि,
1: राशि,
0: राशि,
1: क्रांति,
0: क्रांति,
1: नीति,
0: नीति,
1: और जबकि स्त्रीलिंग ये पुल्लिंग है, शशि,
0: शशि,
1: रवि,
0: रवि,
1: हरि,
0: हरि,
1: मुनि,
0: मुनि।
1: अब कुछ हिंदी के बड़ी इकारांत शब्द है, जैसे मानो नदी, गठरी, उदासी, सगाई, चतुराई, चिट्ठी, मिठाई, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन बड़ी ई लास्ट में या अंत में आने पर भी वो पुल्लिंग है, वो है पानी, दानी, प्राणी, घी। तो देखो वही इकारांत, बड़ी इकारांत कुछ पुल्लिंग में है तो कुछ स्त्रीलिंग में है ना। तो स्त्रीलिंग में क्या क्या है मेरे साथ कहो? नदी,
0: नदी,
1: गठरी,
0: गठरी,
1: उदासी,
0: उदासी,
1: सगाई,
0: सगाई,
1: चतुराई,
0: चतुराई,
1: चिट्ठी,
0: चिट्ठी,
1: और पानी, कहो मेरे साथ पानी,
0: पानी,
1: दानी,
0: दानी,
1: प्राणी,
0: प्राणी,
1: घी,
0: घी,
1: ये सब पुल्लिंग। समझ गए ना?
2: अच्छा,
1: अब आओ छोटी ऊ, यानी उकारांत। जैसे मानो ऋतु, वस्तु, मृत्यु, वायु, ये सब स्त्रीलिंग है, जबकि गुरु, साधु, मधु पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग क्या क्या है? ऋतु,
0: ऋतु,
1: वस्तु,
0: वस्तु,
1: मृत्यु,
0: मृत्यु,
1: वायु,
0: वायु,
1: और पुल्लिंग है गुरु,
0: गुरु,
1: साधु,
0: साधु,
1: मधु,
0: मधु
1: आदि
2: आदि।
1: अब देखो यहाँ पर उकारांत यानी बड़ी ऊ होगा जहाँ पे, उसमें भी कुछ स्त्रीलिंग है कुछ पुल्लिंग है। बधु, लू, मेरे बाद में कहना, पहले मुझे कहने दो। बधु, लू, झाड़ू, तराजू, ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन आलू, भालू, आंसू पुल्लिंग। तो क्या क्या स्त्रीलिंग है? बधु,
0: बधु,
1: लू,
0: लू,
1: झाड़ू,
0: झाड़ू,
1: तराजू,
0: तराजू,
1: और पुल्लिंग है आलू,
0: आलू,
1: भालू,
0: भालू,
1: आंसू,
0: आंसू,
1: आंसू ने आंसू कहो, आलू,
0: आलू,
1: भालू,
0: भालू,
1: आंसू,
0: आंसू।
1: अच्छा, ये जो हम लोग बोलते हैं ना भाषा, जैसे असमिया है, बंगला है, हिंदी है, हाँ, इसके भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, ठीक है? तो ये सब जो है बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे असमिया, हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, संस्कृत,

0: प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर, और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को

0: समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्हास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई ठाणे पालघर।

0: और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: আৰু এতিয়া দেখোন তই নিজৰ স্বাস্থ্যক লৈ একেবাৰে চিন্তামুক্ত।
2: চিন্তা কিয় কৰিম, মই একেবাৰে সঠিক ঠাই বিচাৰি পাইছো।
1: কোন ঠাই অ?
2: গুৱাহাটীৰ ভেটাপাৰাৰ হোমিঅপেথিক আঞ্চলিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান।
1: তাত হেৰো কি কি সুবিধা পোৱা যায়?
2: বিশেষজ্ঞ ক্লিনিক, চৰকাৰী সাহায্যত সুলভ চিকিৎসা, যোগ্য ৰোগীৰ বাবে বিনামূলীয়া ঔষধ আৰু উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য সেৱা।
3: তেন্তে মই এবাৰ যাব লাগিব।
2: নিশ্চয় নিশ্চয়, তোৰ বাবেও স্বাস্থ্য সৰ্বাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ।
4: হোমিওপেথিক আঞ্চলিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, ভেটাপাৰা, গুৱাহাটী।

0: गायन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल, तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग यमन इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही नाउ प्रेजेंट्स राग हमीर, the composition of which is set to madhyalaya teen tal followed by drut ek tal।

0: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhyalaya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: गायन के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति इन द ख्याल रिसाइटल बाय पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय इमोन सरकार, ऑन द हारमोनियम बाय कमलाक्ष मुखोपाध्याय एंड ऑन द तानपुरा बाय कोयल साहा। And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा

0: कि यह संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources.
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi OSAT facility and India's new leap towards self-reliance in technology. In a social media post, Mr. Shah said the new facility will further invigorate Gujarat as the country's growth engine and open vast employment opportunities for youth. Prime Minister Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia,